मुरारा, शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा, तुर मस्तक जिनको लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित बिद पाई संत जन हो जिस देख हों जीवा, हर बिन चसा ना जी।

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ, जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुन

दिन सजाए पूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी,

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूट त्यागे हर लिव लाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावे। कृष्ण बल भद्र गुर पग लग प्यावे।

नित नित सुख पाई, जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्ते।

ता हर नाम मन चित नित त्यावहो जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए

हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर कै आगे सतगुर दाता नाम दिढ़ाया मुख मस्तक भाग सभागे राम गुरमत हर लिब लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिब

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तारी, तिन जम जोहन लागे।

गुर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी

इस ग्रह में कोई जागत रह साबत वस ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन हा

लाथी भूख तृष्ण सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरै धरयो, मन जीतो जग सारी, तृप्त अघाए रहे।

रैन दिन सास सास चितारे जियो। संत देओ संदेसा पै चरणारे जियो। तुद बिन कित बिद

सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे। मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ।

कहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सब

पत पाए। गौड़ी महला पहला, हों मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हों हों करत नहीं।

सी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना ना मोह भूले जम का दुख सहना मैं तार नाम ज्यों राख हो रहना।

सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चूकी अहं भ्रमणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिन कै मन वस्या सच सोई तिन की संगत गुरमुख होई।

अर्ध उर्ध की संध क्यों जाने, गुरमुख संध मिले मन माने, हम पापी निर्गुण कौ गुण करिए, प्रभ हुए दयाल नानक जन तरिए, सोलह अष्टपदियां ग्वारे री गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला, एक

आत्म सुख तारा हित उतरा खो दीन दयाला तौ शरणागत नदर निहाला रहा जह देखो तह रव रहे रख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सहना दियारा जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझै सुख होई क्या ले आया ले जाए कया पास है जम जाला डोल बदा कस जेवरी आकाश पाताला

सो अपर अपारा सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया गुर कृपा ते बूझिए सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कब है न जाए जिचर शब्द ना पीजै हर कै नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जम्मै वारो वार।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग ज्यों लाए बहै नित ध्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना। बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई।

जाए, जम डंड सह है सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, होमे मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई।

नानक गुरमुख बूझै कोई, गौड़ी महला तीजा। नाम अमोलक गुरमुख पावै, नामो सेवै नाम सहज समावै।

गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सतसंगत सतगुर पाल सतसंगत लग हर त्याई हर हर चले तेरे नाल मन करहला बड़ भागिया हर एक

छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन कर हला बट भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग

पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना। जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट चीना। सहज सुहेल

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहरै।

कलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पाश पंखी अनक जोन जिंदू सगल पसार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपौ नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

समाहे। जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिझे, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सो ई जति, जो इस मारे तिस हो वै गति।

हर संग रखवाला, पूर्ण पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस।

मंडन दुख पंजनों भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो।

प्यारे अहंस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे। साधन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे। अपने गुर

जियो गुर पुरख बिधाते पुरखो बिधाता एक श्री धर क्यों मिलहै तुझे उडीनियां कर करहै सेवा शीश चरणी।

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुम

या जुगम है एक है कौ आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया, गर्भ कुंट में उर्ध तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना, देवनहार मन है बिसराना, कार हो कृपा जिस है गुसाई, एत ओत नानक तिस बिसरहो नाही। श्लोक

देव जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

पवजल ते काढ़ो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुर बचन समाए। खिमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकुर पई अनंद सुख विश्राम।

अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ काल कलेश तन माहे मिटावाओ सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधा खेर कीने राम नाम एक आखेर।

से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरहें से बे मोहताजे प्रभ कौ सिमरहें से सर्ब के राजे प्रभ कौ सिमरहें से सुखवासी प्रभ कौ सिमरहें सदा अभि

प्रभु कौ सिमरहें से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरहें तिन सुख बिहावे, प्रभु कौ सिमरहें तिन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमरहें तिन निर्मल रीता, प्रभु कौ सिमरहें।

अष्टपदीम। जह मात पिता सुत मीतना पहाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जह महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जह मुश्किल होवे अत पहारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावहो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग ते

अनेक अगन नहीं बुझाए, कोट उपाव दरगाह नहीं सिझाए, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूलते कम दृष्टानी जिन तू साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म महसोद है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित कै उपदेश।

पदी मानुख की टेक बिरछी सब जान देवन कौ एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आय मारे राख को आप मानुख कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म भू

आकारी तहरी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल महे आप अनेक जुगत रथ थाप ओथाप अविनाशी नाही किश खंड तारन तार रहो ब्रह्मांड।

अष्टपदी जब अकार एहु कछ न दृष्टे ता पापुन तब कहते होता। जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कह किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै। आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछ।

श्रेष्ठम चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान।

अतुल क्यों तुलिया सेवड भागी जे तुद ध्याए दे जिन सतगुर मिलिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की रीस है होर

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी, जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े, जो मन चित एक अराध दे तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े, तुद नो सब ध्यान दी।

सेवा करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहन दे, भगत मुख है ते बोल दे, सेवा

करे हर वस्त संभाले, नाम निधान हर बन जीए, हीरे पर वाले, विण काया जे होर थै तन खोज दे, से मूड़ बेताले, से उजड़ परम पवाई है, ज्यों चाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा

दुख अंडोह नहीं तेह ठाव नाथ सविश फिराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल अब मोहे खूब।

पाप संताती। दुर्मत त्याग लाहा किशले वहो, जो उपजाय सो अलाख अपे वहो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

पर्ण शोभा कंठ फूल प्रत्यखी दृष्ट पाए सगल निधान। दुष्ट दूत की चूकी कान साध खुशियां।

सम्हारे एको एक आप एक एक है सगला पासारे जब जब होए सगल साध जन एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

छोड़ चलै अभिमानी, काहे एक बिना चितलाइय, उठत बैठत सोवत जागत, सदा सदा हर त्याइय रहाऊ।

अघ कटे कन्हेरे सुख सहज आनंद तना गुर सेवा ते भय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहा।

शगुन अपशगुन तिस को लग है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ पहावे पुन दान जब तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना।

आढ़ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

बुझाई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़।

मेरा गोविंद अलख अपार जियो, गोविंद अलख अपार अपरंपर, आप अपना जाने क्या एह जंत विचारे कही है, जो तुद आख बखाने जिसनों

अमृत शकशके गुरतुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत भगत।

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध

कबीराभीष्ट षोड़ कर दोजक स्यों मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद न बरखै नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माद

माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहा। जल तिरंग

भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच देख काम लुभ दराता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाओ।

देखभाल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुर है तन दिया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त पय जोत समा

वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत भगत भंडारे जिन दर्शन सतगुर सत

गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा। सतर दहन हर नाम कहन अवर कश ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ। गुजरी महला पंजवा तू समरा।

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं

कहे फूल है आनंद बिखै सोग, कब हसनो कब रोइए, कब हू मैल भरे अभिमानी, कब साधु संग धोइए, कोई न मेटे प्रभ का किया, दूसर नाही अलोइए, कहो ना

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल। इत मद पीता नानका बहुते खटिया है बेकार।

आए मनमुख फूले देख लगे अहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया।

सदा सुख बसहि, सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजै पाए परम विभूति।

सुख समत कर जाने, सोई भगत दुख सुख समत कर जाने। हर हर नाम हर राता हर कृपा कर, सतगुर मेल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हो मैं पापा राम। जप हर हर

वढ़ंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम राख जगत सगल दे हथा राम समरथ शरणा।

मिलहै जे सतगुर लागहै साचे पाए। सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए। अवगुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सचराती सच्चा शब्द सदा सुख पाए।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

जाए। सतगुरु मिलै तनिर मल होवै, हर नामो मन वसाय। नानक नाम त्याया सुखदाता, दुख विसरिया सहज सुभाए। पौड़ी जिन जग जीवन उपदेसया, तिस गुर कौ हो सदा कुमाया। तिस गुर कौ हो खनिया, जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया। तिस गुर

नानक गुरमुख सदा सुख पावे है, आनंदन हर बैरागी पौड़ी। से गुर सिख धन धन है, जिन्नी गुर उपदेश सुनया हर कन्नी। गुर सत गुर